बचा रहा समझदारा बिचारा तुम कुलीनर सभ्यसो सरदार को कुलीनर हाथ बू अल्प नवर का चिता